0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: I've met many such determined souls in my physical deformity ya koi bhi physical problem hone ke bawajood hausla beinteha tha. जो रोज सुबह उठते थे और हौसले और ताकत के सर पर एक जंग लड़ते थे और सिर्फ लड़ते नहीं थे जीतते भी थे. इसी वजह से शायद हर सुबह उनके लिए एक नया इम्तिहान होता था. हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं.

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: जी जनाब, चाहे घड़ी की सुइयां भागती जा रही हैं और मेरे जाने का टाइम नजदीक आता जा रहा है, पर एक बात कहूं, तुम मुझे अलविदा ना कहना, क्योंकि तुमसे नाता है यूं वफाओं का, जैसे खुशबू से है हवाओं का, जैसे होंठों से दुआओं का, जैसे रिश्ता हो धूप छाओं का। अजीब सा सुकून है, पाकीजगी है इस रिश्ते में, इसीलिए तो कहती हूँ कि तुम मुझे अलविदा ना कहना।

0: कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज।
1: ये जिंदगी भी न जाने कितने मोड़ लेती है, हर मोड़ पे एक नया सवाल देती है। ढूंढते रहते हैं हम जवाब जिंदगी भर, और जवाब जब मिल जाए तो सवाल बदल देती है।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: चाहे दूरियां आ जाती हैं रिश्तों में कभी कभार मगर समय हमेशा एक साथ नहीं रहता। मेरे जाने पे ए जाने जाना परेशान तुम नहीं होना, कभी छुप कर तुम नहीं रोना। जुदाई जहर होती है मुझे मालूम है, लेकिन फिराक और हिजर का मौसम यकीनन बीत जाएगा। यकीनन वक्त के लम्हे दोबारा लौट आएंगे, वही शामें वही रातें वही किस्से वही बातें, वही फिर दास्तां होगी मोहब्बत फिर मेहरबान होगी।

0: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਸੁਣਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ।
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
3: सिम्टम्स को देखकर जैसे पता लग जाता है ना कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, बिल्कुल वैसा ही है मोहब्बत के साथ भी। वही तकरार लफ्जों की, वही गुमनाम सी कसक, वही हर बात पर रंजिश, वही हर बात पर लड़ना, वही लिखना हमारे नाम को बेरहम मौजों पर, हमें पर्दे से छुपकर देखना और मुस्कुरा देना, वही मुस्कान धीमी सी, वही कुछ बोलती आंखें, वही साये से घबराना, सभी आसार कहते हैं कि हाँ उसे मुझसे मोहब्बत है, बेहद मोहब्बत।

0: côté. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanch hai, khima hai,
1: zindagi ek rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet naal labrez.
1: Culture of Punjab.
3: अच्छा, अगर हम एवरेज 70 साल तक जीते हैं तो आपको पता है कि अपनी लाइफ की डिवीजन कैसे होती है? करीबन 25 साल तो हम सोकर गुजार देते हैं, 8 साल पढ़ाई करने में, 6 साल आराम करने में या यूं कहें कि बीमारी में, 7 साल टीवी देखते हुए या हॉलिडे पर, 4 साल खाने में, 5 साल सड़कों पर, घर से काम, काम से फिर वापस घर. तो बचे कितने? करीबन 12 साल. सिर्फ 12 साल, यही टाइम, यही साल है जिसमें खूब सारी मेहनत करनी है हमें. और अगर ये टाइम भी हाथ से गवा दिया हमने, देन डोंट यू थिंक वी हैव लॉस्ट नियरली एवरीथिंग? वेल, सोच कर देखें. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट जिसे शेयर किया मैंने, यानी प्रीत ने, आपके साथ आपके अपने शो कल्चर ऑफ पंजाब में.

0: कल्चर ऑफ पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: अच्छा, जब आप और हम कॉलेज पास आउट करते हैं ना, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा टारगेट होता है जॉब ढूंढने का। कई बार हमें एक बहुत बढ़िया जॉब मिल भी जाती है, बट स्टिल एक क्वेश्चन मार्क, सैलरी इतनी कम क्यों? पर ना, एक बात हमेशा याद रखें कि एट द बिगिनिंग ऑफ योर करियर व्हाट यू लर्न इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू अर्न। जो आपने अपने करियर की शुरुआत में सीखना है वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि आप अर्न कितना कर रहे हैं उस टाइम। तो जी, इसलिए एक्सपीरियंस गेन करें, काम को दिल लगा कर सीखें, तो सैलरी ने तो खुद ब खुद पीछे आ जाना है।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਆਹੋ ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀਰੇ ਪਰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ
4: जब तक आप ये यकीन नहीं करते कि जौन सा काम आप कर रहे हैं वो दुनिया का सबसे बढ़िया काम है, आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। और इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा टिप है। अच्छा, ऐसा करें, दिल को अपने काम में बसा लें और काम को अपने दिल में, फिर देखें रिजल्ट कितना कमाल का होता है। मेरे को पता है कि आपने ऐसे तो मानना नहीं है, चलो ट्राई कर लें, हर्ज भी कोई नहीं है।

0: ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
1: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
2: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ।
3: कुछ दिन पहले मैंने पेपर में हमारी फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर और मैगसे अवार्ड विनर किरण बेदी का एक आर्टिकल पढ़ा, जो खास कर पेरेंट्स के लिए था एंड वेरी स्पेशली फॉर द पेरेंट्स ऑफ डॉटर्स, बेटियों के माँ बाप के लिए। उसमें एक बहुत टचिंग सी बात लिखी हुई थी कि जब भी किसी घर में एक बेटी जन्म लेती है तो आंखें खोलते ही अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से, नाना नानी से सबसे एक ही सवाल पूछती है, एम आई वेलकम इन द फैमिली, क्या मैं आपका गुरूर हूँ या आप पर बोझ हूँ। और ये पेरेंट्स ही हैं जो उसे सहारा दे, उसकी ताकत बन सकते हैं आगे बढ़ने में अच्छी एजुकेशन देकर। किरण बेदी कहती हैं कि वो एक छोटे से शहर अमृतसर से हैं, जहां जरूरत है उनके अपने पेरेंट्स जैसे पेरेंट्स की, हजारों लाखों की संख्या में, जो खासकर अपनी बेटियों की एजुकेशन पर इन्वेस्ट करें और उन्हें समझा पाएं कि किताबें सोने चांदी की ज्वेलरी से बहुत ज्यादा कीमती है, जो उन्हें ऐसी जिंदगी दें कि फिर कोई बेटी ये दोबारा न कह सके कि अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजिए।

आज के शो कल्चर ऑफ पंजाब में हमने अपने आसपास के हर पहलू, हर फील्ड को टच करने की कोशिश की, लेकिन एक कोशिश नहीं, वादा करना है हमें अपने आप के साथ कि हम किसी न किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर विल ट्राई एंड मेक अ डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ द अंडर प्रिविलेज सेक्शंस। एक नहीं, हजारों ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें जरूरत है आपके जैसे लोगों की, जिनके पास जरिया है सोसाइटी में चेंज लाने का।